पास जैसी हो न हो किस्मत की वो हेती न टिंगनी इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी।

0: नाजोकी गोपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली वो गोरी गोरी गोरी वो गोरी हाथ काली जो जहां से वाली मिल जाए तो फिर वक्त मिल जाए तो फिर
1: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए, लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: ताज़ा करें अपनी यादें।

है लाइका गोल्ड, बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोए। गावे को तान हुवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

होए जेको मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती सनबंध।

तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार।

जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: डीप राजा अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
2: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
1: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
2: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
1: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
2: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG।
1: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
2: सेगा नवरात्रि, भक्ति मस्ती और गरबा।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
5: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
6: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
7: Breakfast with Deep Raja.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इलफर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
2: बीकानेर वाला।
3: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA9 9PE. Come and share the joy of Navratri with us.
9: Sponsored by Star Tours. Switzerland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
10: Plan your exotic dream holiday to Maldives, Mauritius, Bali, Zanzibar and many other destinations only on TravelHubWorld.com.
11: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 or 0208-782-8833.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
11: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
12: Kalai par hire, chehre par muskan. Diamond tennis bracelet, £2,500 se shuru. Meenar Jewelers, 181 Upper 2. Road. Call 020-8767-7627. Meenar Jewelers, the diamond specialists. Share festive sweetness with Haldirams.
1: Kaju Katli, Coconut Barfi, Gulab Jamun, Mysore Pak, Milk Cake, Rasgulla and more. A taste of home.
12: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
13: Haldirams.
12: आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं। प्रार्थना की अब घड़ी आ गई, माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, भरने सबकी झोली माता रानी आ गई। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: Navratri special on Leica, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Breakfast with Deep Raja.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा। हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
3: That's right. Now travel to Dubai without a heavy price tag, because Southall Travel's affordable Dubai offer combines exclusive deals at selected partner hotels with direct flights from Emirates. Yes, from just £629

0: जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में शक्ति फिल्म से था ये गाना, जो 1982 में आई थी और जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था। और उससे पहले आपने खुददार फिल्म का गीत सुना, अमिताभ बच्चन परवीन बॉबी की एक और धमाकेदार फिल्म जिसमें राजेश रोशन का म्यूजिक था। और आप समझ ही गए होंगे कि आज गीतों में अमिताभ बच्चन के गीतों का बोलबाला रहेगा। हाँ जी, सही सुना। उसका कारण है क्योंकि आज बिग बी एबी या फिर कहूँ अमिताभ बच्चन अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 84 ईयर्स के हो गए हैं। 11 अक्टूबर 1942 में जन्मे थे और देखिए तब से लेकर अब तक, यानी कि जब से फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग कामों की वजह से चर्चाओं में है, पॉपुलर है, लोगों के दिलों में है, लोगों की पसंद है। और आज भी लोग उनके बर्थडे को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। इनफैक्ट हर चैनल, हर रेडियो स्टेशन पर आज अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम क्यों पीछे रहे, हमारे भी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो उनके बड़े फैन हैं, इंक्लूडिंग मी। तो आज उनके गीतों का शो में बोलबाला रहेगा। लेकिन आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय दुर्गे माँ। और बस यही कहूँगी कि ये नवरात्रि मज़े के साथ धूमधाम से बनाइए और माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर रहे, जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, कभी कोई दुख ना आए, हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश रहें। ऐसी ही कामना के साथ बढ़ते हैं आगे। और आपको बता देते हैं कि यह है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर मैं ऋतु शर्मा हूं आपके साथ पूरे 3 घंटे। हम और आप ढेर सारी बातें करेंगे, गाने तो ऑफकोर्स सुनेंगे ही, सुनवाऊंगी जोड़ी नंबर 1, बजाऊंगी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी, और हाँ, हम अपना 3 वर्ड्स गेम भी खेलेंगे। बस आप रेडियो सेट्स के पास बैठे रहिए और मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: Hi, clairvoyance here. How may I be of prediction?
4: I'm wondering about my future retirement.
3: You and me both. Well, I'm seeing an app, the HMRC app. You open it and there it is, your state pension forecast.
4: What about gaps in my national insurance record?
3: Well, you can see and fill those. Oh, and it's handy for tax refunds.
4: Right, thanks.
3: The pleasure's yours. Now download the HMRC app for your money and tax. You're on it.
5: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Tomato food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: Discover Rio de Janeiro, Sao Paulo in Brazil, Machu Picchu and Cusco in Peru with TravelHubWorld.com.
4: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
5: Celebrate with Haldirams.
6: Punjabi chole, rajma rasila, yummy dal makhni, aloo matar, sarson da saag and more.
5: Favorites ready to eat. Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
7: Haldirams.
5: आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं। प्रार्थना की अब घड़ी आ गई, माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, भरने सबकी झोली माता रानी आ गई। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
8: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्कॉटलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
9: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ बिल्कुल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल, और यही काम करना है पूरे 9 दिन, क्योंकि ये नवरात्र हैं और 9 दिन तक ये त्यौहार चलने वाला है। तो आज के नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और जैसा कि आपने सुना कि नवरात्रि के पहले दिन नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत या हिमालय, और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, यानी कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। लेकिन आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम ये नौ दुर्गे का त्यौहार क्यों मनाते हैं, जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको जरूर जानना चाहिए कि ये नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, खास तौर पर इस समय शरद नवरात्रे जिन्हें कहा जाता है। जरूर अपने बच्चों को या उन्हें बताइए जिन्हें नहीं पता है। इसके पीछे दो बातें हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नाम के शक्तिशाली असुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या के बाद वरदान पा लिया था, और वो वरदान था कि कोई भी देव, दानव, पुरुष उसका वध न कर सके। और जब ये वरदान मिल गया तो महिषासुर अहंकार से भर गया और उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। और इस महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि भगवान शिव के पास पहुंचे, और सभी देवों के तेज और शक्ति को मिलाकर देवी दुर्गा माँ शक्ति का प्राकट्य हुआ, और देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। और इन सब के बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला, और 10वें दिन यानी कि जिस दिन हम विजयदशमी मनाते हैं, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर तीन लोकों में उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई, और इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया, और इन 9 दिनों को नव दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। और एक और है बात जो आपने सुनी होगी कि जब लंकापति रावण से युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने रावण का वध करने में और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इसी अश्विन महीने में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक कठिन उपासना की थी, और श्री राम की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर माँ शक्ति ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था, और इसके बाद 10वें दिन यानी कि इस महीने जो अश्विन महीना है कि दशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और इसीलिए नवरात्रि के समापन के अगले दिन विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो वही आप सबको आज के दिन की इस नवदुर्गे के पावन पर्व की ढेरों बधाइयाँ, और जो गीत मैंने बजाया आप सबने पसंद किया, तो बस साथ देते रहिए, कुछ ऐसे ही गीत सुनवाती रहूंगी। लेकिन याद है ना, आज अमिताभ बच्चन का बर्थडे है, तो उनके गीतों का आज बोलबाला रहेगा प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के बाज में ये गाना उन सभी को डेडिकेट करते हैं जो रफ़ी साहब के फ़ैन हैं। ख़ास तौर पर हमारे विजय जी, आपके मैसेजेस मिले हैं और आपने कहा है कि ऋतु, ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ अब थोड़ी बेटर हो गई और आपने जितने भी लिसनर्स की एडवाइस है वो फॉलो की है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने, मैंने आप सबकी एडवाइस पूरी की है। इनफैक्ट आपको सच्ची सच्ची बता दूं कि मैं बहुत जतन कर रही हूँ कि मेरा गला और मेरी आवाज़ जल्दी से ठीक हो जाए, और इसीलिए आज जो मेरी छोटी सी बॉटल है थर्मस वाली, उसमें मैं मैजिक वाटर बनाकर लाई हूँ। यू नो वो मैजिक वाटर जिसमें थोड़ा सा जिंजर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, तुलसी के पत्ते, हल्का सा लेमन और हनी डाल के आज मैं सारा लेकर आई हूँ और दो दो सिप साथ साथ पीती जा रही हूँ। क्योंकि दिन में मुझे कितना भी कॉफ हो जाए, कोल्ड हो जाए, आई डोंट माइंड, लेकिन रात में जैसे ही आप सोते हो ये सारी चीज़ें एक साथ प्रकट हो जाती हैं और वो भी डबल स्वरूप में, और फिर आपको सोने नहीं देती। भाई मुझे लगता है यार जितना तंग करना है दिन में कर लो, रात में तो बंदे को चैन से सोने दो, लेकिन रात में ये सब चीज़ें राक्षस बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं और आप सो नहीं पाते, और इसीलिए दिन में मैं पूरा जतन करूँगी कि इनसे फाइट करूँ ताकि रात में ये मेरे पास तो क्या मेरे रूम के पास भी ना आ पाए। एनीवेज थैंक यू, आपने मेरा हालचाल जाना पूछा और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं। सभी को जय माता दी, सभी का स्वागत है इस शो में, और आप में से कुछ साथी कहते हैं कि हमें आपका उत्तराखंड का एक्सपीरियंस जानकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो पता है मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आप सबको बताने के लिए, अब बताती रहूँगी धीरे धीरे, अब तो आ गई हूँ, अभी हाल फिलहाल कहीं जाने वाली नहीं हूँ। और शबीर कुमार जी आपने भी चार लाइन हमारे साथ शेयर किया, कहते हैं मुझको फिर वही सुहाना नजराना मिल गया, नजरों को जो दीदार तुम्हारा मिल गया, और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं जब मुझे तेरी बाहों का सहारा मिल गया। वाह क्या बात है।
1: ये है लाइका गोल्ड, classics to make your weekends feel good, this is Ritu Sharma on Lyca Gold by South Old Travel।
0: तो चलिए आपको बता दें कि अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल के पास अफोर्डेबल दुबई के ऑफर है जिसमें एक्सक्लूसिव डील्स हैं एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद

0: चीज। आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: मैं हूँ अनीसा नासिर, लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।

0: जिंदगी वहां सैटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
2: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
1: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
2: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
4: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
3: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
6: व्हाट फूड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी.
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे.
7: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA9 9PE. Come and share the joy of Navratri with us.
8: Sponsored by Star Tours. Switzerland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
9: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग.
10: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा.
9: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM onwards.
10: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM.
9: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
11: Simple, stunning, so you. Discover beautiful chains from just £225. Meena Jewellers, 181 Upper Tooting Road. Call 020 8767 7627.
12: Tune in to Navratri Hours on Laika Gold at 9 AM and Laika Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
13: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
14: Download the Laika Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
15: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Laika Gold.

0: तो ये थी आशा भोसले और किशोर दा की आवाजें, और इस बार हम अमिताभ बच्चन की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सबके मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको गीतों में मजा आ रहा है, तो बस हमारा साथ देते रहिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने मैंने लाइन अप किए हुए हैं, और अब थोड़ी ही देर में शुरू करने वाली हूँ आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला, जिसमें एक बार फिर से अमिताभ बच्चन और किशोर दा की आवाज़ें, क्योंकि किशोर कुमार के लिए उन्होंने ही बहुत ही खूबसूरत गाने गाए हैं। 80s में हो, 90s में हो, 70s में हो, जो अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म्स हैं। लेकिन उससे पहले आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, ज़रा उन पर एक नज़र डाल लें। नवरात्रे आज से शुरू हुए हैं, तो नवरात्रों की आपको ढेरों बधाइयाँ, जय माता की, जय माँ अम्बे। एंड साथ ही साथ ये मैसेज मुझे भेजा है किन्होंने, केदार जी, थैंक यू, या कहो ऋषि पटेल, दोनों नाम लिखे हैं, और आप चाहते हैं कि अमिताभ जी और रेखा जी का मुकद्दर का सिकंदर का गाना या फिर जया प्रदा का शराबी गाना बजा दिया जाए। हाँ ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, देखती हूँ जगह हुई तो ज़रूर बजाऊंगी। गुरुदेव गांजा, आप हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू वीरेंद्र चौधरी जी, आपके और सभी साथियों को नवरात्रि की ढेरों बधाएं। और आपको बताएं कि आपने जो हिमाचली टोपी लगा रखी है ना, हमने भी वो हिमाचली टोपी खरीदी है जब हम वहाँ गए थे उत्तराखंड, और उसमें हमने फ़ोटो भी खिंचवाया है और सोशल मीडिया पर डाला भी है। कमाल की अच्छी लगती है, मज़ा आता है पहनकर। सो थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हैं। फारूक मोहम्मद जी को अमिताभ बच्चन के गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो सच्ची इन्जॉय कीजिए। प्रीति कहती है कि आप उत्तराखंड हुआई, मैं भी देहरादून की हूँ, आप वहाँ गई थी क्या? मैं देहरादून तो नहीं गई, और आपको लग रहा है कि मैंने हेलीकॉप्टर से दर्शन किए होंगे, तो जी नहीं, मैंने वहाँ पैदल चढ़कर भगवान के दर्शन किए हैं। 22 किलोमीटर मैंने वॉक किया है, और ये शक्ति मुझे जय शिव शंभु ने ही दी। सो यस, आई वॉक्ड। और इसके अलावा हमारे साथ है मालती जी, जो प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, और आपने लिखा है कि गीता बहन भी हमें सुन रही हैं, तो गीता बहन आपका भी स्वागत है। मिसेस पेकेचियान, आप हमारे साथ हैं। बिमला दमैंग जी, आपने बताया है कि आज नेपलीज सेलिब्रेट कर रहे हैं दशैन, और ये फेस्टिवल आज से ही शुरू होता है, जिसका नाम है गथा, मैं सही नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि वो ऐसे लिखा है, मैं पता करके आपको सही से बताऊँगी। लेकिन आज का जो आपका फेस्टिवल है, 10 दिन चलने वाला है, आपको उसकी सबको ढेरों बधाइयाँ। इसके अलावा जैस्मीन हमारे साथ हैं, टोरंटो से उल्लास जुड़े हैं, तोची जी हैं, दिनेश पुपट, रितेश, मोहम्मद अयूब चौहान, मीरा जी, अरुणायन भूपेंद्र पटेल, मुकेश पटेल, गीता जी, अमिता जी, उषा जी, विनोद जी कहते हैं हमें आपका अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड का, सो थैंक यू। थैंक यू प्रतिभा जी, रानी जी स्लाव से, अरुणा जी, विजय गुडूरी जी, सहर शरफून, महेंद्र पटेल, शेखर जी, जासू जी, हमारे राजेश जी, मनीषा शाह, रोशनी, दिव्या जी, हर्ष जी लेस्टर में सुन रहे हैं, कहते हैं नवरात्रि की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। साथ में है मृदु जी, हमारी पुनीता जी, हरीश खत्री जी, शबी जी, अविनाश पटेल, और जितने भी साथी जहाँ कहीं भी मेरा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है। और लीजिए, सूरज जी भी निकल आए बादलों से, साउथ हॉल से सूरज जी का भी मैसेज आया है। तो चलिए, क्या करें, अगला गाना आप सबको डेडिकेट कर दें, ठीक है, चलिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This year at Amazon, we're increasing the electric vehicles used for deliveries across Europe to over 10,000. It's a difference you'll notice on your doorstep, where babies are made a fuss of, where we deliver footballs for kids' kickabouts, and where they deliver the football straight into next door's garden.
3: No! Can they have their ball back, please?
2: We're delivering change where it matters, on your doorstep. Based on projected delivery service partner vehicles across the UK and EU by end of 2026.
4: Yeah! Like our gold.
5: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती, और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद,
6: बीकानेर वाला परंपरा भी,
5: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड, बीकानेर वाला। इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन.
1: कैच द एवरग्रीन क्लासिक कभी कभी ऑन इट्स 50th एनिवर्सरी.
2: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए.
1: दिस संडे फ्रॉम 2 PM एट योर नियरेस्ट शोकेस सिनेमा.
2: हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे.
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. लॉग ऑन टू showcasecinemas.co.uk/saff/UK.
3: इन टाइम्स ऑफ लॉस, ओम फ्यूनरल केयर इज हियर विद कंपैशन एंड सपोर्ट. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our experienced priests guide families through funeral rites in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day. Om Funeral Care. Honoring your loved ones.
4: Sunshine, skyscrapers and souks.
5: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all price. Protected.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 November को द प्रिंस रिजेंट होटल में
7: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
8: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 November.
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6 November.
10: टू बुक कॉल 0208 514 54. Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: 1 2 3 खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं। प्रार्थना की अब घड़ी आ गई, माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, भरने सबकी झोली माता रानी आ गई। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
4: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किशोरदा की आवाज में अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज ये गाना आपने सुना लावारिस, और मैं आपको सुनवा रही हूँ जोड़ी नंबर वन। वैसे तो आज का पूरा ही शो लगभग जोड़ी नंबर वन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए ज्यादातर गाने किशोर कुमार ने ही गाए हैं। लावारिस फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का, और क्या गाना बनाया है। केबीसी में भी हम देखते हैं जब अमिताभ बच्चन से कोई उनकी तारीफ करता है और बातें करता है और अचानक से ये धुन बजने लगती है तो अपने आप ही हम थिरकना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही जादू है अमिताभ बच्चन के फिल्मों का, और इसीलिए वो आज तक इतने पॉपुलर नहीं हैं, मतलब आज तक इतने पॉपुलर हैं। और राज, आपका मैसेज मिला है, आपने सही लिखा है कि वो इस सदी के लास्ट रियल सुपरस्टार हैं, क्योंकि उन्होंने जो जगह पाई है आई डोंट थिंक सो कि अब कोई और उस जगह पहुंच पाएगा, क्योंकि अब दौर बिल्कुल ही बदल चुका है। फिल्में तो आजकल चलती ही नहीं, एक हफ्ता भी चल जाती है तो उसे हिट मान लिया जाता है, और हमने सुना है कि पुराने ज़माने में तो फिल्में दो दो साल तक सुपरहिट रहा करती थीं, तो ज़माना बिल्कुल बदल गया है। और आपका मैसेज मैंने पढ़ा है, थैंक यू, आपने जिन फिल्मों के बारे में बोला है उनके सारे गाने मैं सुना चुकी हूँ और आपने मुझे लेट सुनना शुरू किया, अब बताइए मैं क्या करूँ। एनीवेज, अगले जो गाने बजने वाले हैं ना, उन्हें एंजॉय कीजिए, और जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मेरा साथ भी दे रहे हैं।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या गाना बनाया है आर डी बर्मन ने और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस गाने में चार चांद लगाए हैं। फिल्म है बेमिसाल, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया था। अमिताभ बच्चन के साथ राखी और विनोद मेहरा इस फिल्म में थे, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं की गई थी, हिट फिल्म नहीं थी, लेकिन गाने मुझे तो तब भी पसंद थे और आज भी इस फिल्म के गाने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक गाना अभी आपको सुनवाया और इसके अलावा एक और बात कहने वाली थी, निकल गई ना दिमाग से, लेकिन चलिए सुशीला जी का मैसेज पढ़ लेते हैं। और आपने लिखा है कि जय श्री कृष्णा, आपका चारधाम यात्रा कैसी रही? तो मैं चारधाम तो की नहीं, सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ की, गंगोत्री जमुनोत्री बात के लिए छोड़ दिया, क्योंकि 6 दिन में सब जगह नहीं जा सकते और उत्तराखंड में इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मैं माणा गाँव नहीं जा पाई, जो भारत का पहला गाँव है, जहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम है, गणेश गुफा है जहाँ, वो बंद हो गया था लैंडस्लाइड के कारण, तो हम वहाँ भी नहीं जा पाए। हालांकि वो बद्रीनाथ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, पर वो भी छूट गया। धारी देवी के दर्शन भी छूट गए, क्योंकि वहाँ पर 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था लैंडस्लाइड के कारण, तो वो भी नहीं देख पाए। पंच केदार भी नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ जाने में भी बहुत समय चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि भाई मेरी तो बहुत चीज़ें छूट गई हैं, इसलिए दोबारा कभी जब भगवान बुलाएंगे तो जाऊंगी और इन सब चीज़ों को देखकर आऊंगी। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा समय लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ कच्चे पहाड़ हैं और बारिश पहाड़ों में बहुत होती है। बादल छुप छुप कर बैठे रहते हैं पहाड़ों में, कभी भी बरस जाते हैं जब मन होता है, तो लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहेगा, आप मिस कर देंगे कुछ, ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपके पास समय है और आपके पास अच्छी सेहत है और भगवान का दिया हुआ लक्ष्मी है धन है, तो अच्छा समय लेकर वहाँ जाइए। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ बढ़िया समय बिताइए, मौसम भी बहुत शानदार है और अपना देसी खाना तो अवेलेबल है ही, घूम फिर कर आइए। ये मेरा सजेशन है और आने वाले टाइम में जब मैं कभी जाऊँगी तो मैं भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स। रिचि शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड। Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo only on Like a Gold.
0: तो आपको बता दें कि इस बार का जो लाइका एक्स्ट्रा का पॉडकास्ट है उसका एपिसोड आ चुका है और इस बार का टाइटल है लाइक अ मैन अनफिल्टर्ड, जिसमें बहुत सारी बातें हैं आप सुन सकते हैं किसी भी लीडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर जहां पर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: विद अप टू £3,000 एवरी ईयर टुवर्ड्स करियर ग्रोथ एट Amazon, I started in the warehouse, knowing I could train in things like coding or robotics.

0: भाई सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, और जब से सुदेश भोसले ने इस गाने को गाया है अमिताभ बच्चन की समझो आवाज ही बन गया, और उसके बाद अमिताभ ने अपने आवाज में कोई गीत नहीं गाया। लेकिन इस गाने से जुड़े हुआ एक किस्सा जरूर सुनाऊंगी कि जब इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को पता चला कि उन्हें ये गाना करना है कि जुम्मा चुम्मा दे दे, और आपको बता दें कि जब ये फिल्म आई थी तो अमिताभ बच्चन की एज लगभग 49 ईयर्स की थी, और जब उन्होंने गाने के बोल सुने तो वो बोले यार 49 की एज में मैं ये कैसे कर पाऊंगा कि जुम्मा चुम्मा दे दे। उन्होंने कहा कि किसी यंगस्टर पे ये गाना पिक्चराइज करो, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं माने, कहे अमिताभ जी आपको ही करना पड़ेगा। और देखिए इसी को कहते हैं रियल आर्टिस्ट, कि इस एज में भी अमिताभ बच्चन ने क्या एनर्जी डाली और क्या गाना किया कि इस गाने को सुनने में तो मजा आता ही है, देखने में भी अच्छा लगता है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए, 163 बांग्लादेशी टकास एंड 1.3 US डॉलर्स।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 101.94 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: ये है Leica Gold, 10:35 AM.
4: Wembley ना जूना अने जानीता पार्टी दारो नवरात्रि नू आयोजन करे तो पची एमा कहीं जना घटे।
5: OMB Event and Manik Chowk लेने आवया छे नवरात्रि 2026 गरबा क्वीन जानवी रावल साथे।
4: 10th October ए प्री नवरात्रि अने 11th थी 19th October नवरात्रि नी रमझट Wembley नी R Kelvin School, Wembley High Road मा।
5: तो हालो सौ साथे मड़ी सहयोग आपो अने परिवार साथे गरबे घूमवा जोड़ाओ।
4: टिकट्स अवेलेबल at Manik Chowk અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો ભરત પટેલ ને 0789171439। જય માતાજી। चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL।
4: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
4: कॉल प्रथम पटेल 0783830 2450।
7: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by Om Events on Tuesday, 13th October at the Willows Forest Road, Ilford, IG63SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
8: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
9: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
10: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
9: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
10: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
9: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
10: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG।
9: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
10: सेगा नवरात्रि, भक्ति मस्ती और गरबा।
11: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
12: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
11: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
12: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
11: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
13: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
14: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
15: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
16: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
17: Dubai is the place. 11, 11.
16: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
18: Danu 11, 11. Danu Properties.
19: Fall in love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway and Austria with TravelHubWorld.com.
20: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
19: TravelHub, best service with unbeatable price.
20: At all protected.
19: Visit TravelHubWorld.com.
21: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
6: Tune in to Navratri Hours on Laika Gold at 9 a.m. and Laika Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
22: Ritu Sharma, live on Leica Gold, Greater London.

0: बप्पी था आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ों में। शराबी फिल्म का था ये गाना और इस गाने को सुनकर संध्या भावसर कहती है मुझे भी 9 लाख चाहिए। तो भाई 9 लाख चाहिए तो अपने पति देव से मांगिए, मैं तो सिर्फ आपको गाना सुनवा सकती हूँ, 9 लाख नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आप हमारा साथ दे रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मालती जी कहती हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बिल्कुल है जी, जब तक जिंदा है जब तक साथ रहेगा ही रहेगा। एंड इसके अलावा निर्मला जी आपको ये गीत पसंद है, चलिए आपको भी डेडिकेट करते हैं। और फिर से हमें पता चला है कि ढेरों मैसेजेस मिले हैं, साथी हमारा साथ दे रहे हैं। तो बस सुनते रहिए, प्रोग्राम का आखिरी घंटा आ गया है पता ही नहीं चला और इतने सारे गाने मैंने बजाए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इन गीतों को सुनकर। और साथ ही साथ हमारी मिसेस पेके चियांग कहती हैं ऋतु मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ, तो बस 1 बजे तक तो आप मेरा साथ देते ही रहिए क्योंकि अभी कुछ और भी गाने मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनको सुनकर आपको मज़ा ही आएगा। लेकिन इस आवर में हम गेम खेलते हैं, 3 वर्ड्स गेम खेलते हैं, पता है ना कि भूल गए 3 हफ्ते में। चलिए हम इस हफ्ते में क्या कर रही है ऋतु, मतलब प्रोग्राम का जो लास्ट आवर होता है उसमें हम सैटरडे संडे दोनों दिन गेम खेलते हैं जिसे कहते हैं 3 वर्ड्स गेम, और जिसमें मैं आपको 3 वर्ड्स देती हूँ किसी हिंदी फिल्मी गाने से और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है और आप सब पहचान लेते हो हमेशा ही, क्या बात है, आपके लिए तालियां। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं, पहला है सूरत, दूसरा वर्ड है मंदिर और तीसरा वर्ड है मूरत। 1972 में आई थी ये फिल्म, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, SD बर्मन का म्यूजिक है, बहुत ही प्यारा गाना है। बताइए ज़रा कौन सा गाना है, सूरत मंदिर मूरत 1972 की फिल्म, रफ़ी साहब की आवाज़, SD बर्मन का म्यूजिक, कौन सा गाना है, पता चल गया। चलिए फिर भेजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 07444-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai like a gold.
3: Like a gold. You have one new voice message. New message.
4: Hi Jess, it's Kate, your midwife. I just wanted to follow up on booking your flu vaccine. Flu's always pretty awful, but can be even worse when you're pregnant. Please give me a call back.
5: Flu can put both you and your baby at increased risk of severe complications, including early labour and low birth weight. But the vaccine gives you both the best protection from flu. Speak to your midwife, GP practice or pharmacist. Stay strong. Get vaccinated.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica.

0: कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। क्या खूबसूरत गाना है, क्या खूबसूरत धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने और उस पर आवाजें कुमार सानू और साधना सरगम की। आनंद मिलिंद मेरे बहुत फेवरेट वाले म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इन्होंने 90s के दौर में इतने सुंदर गाने बनाए कि बस कभी मुझे मन करता है कि सारे के सारे गाने इन्हीं के बजा दूं, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, सबकी पसंद के लिए गाने बजाने पड़ते हैं, इसलिए रुक जाती हूँ। लेकिन गुरुदेव गांजा, आपको गाने पसंद आ रहे हैं जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा थ्रीवर्स गेम भी चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिया है। कुछ साथी कहते हैं कि हमने थ्री वर्ड्स मिस कर दिए हैं, तो चलिए एक बार फिर से बोल देती हूँ। आज के जो तीन वर्ड्स हैं उसमें पहला वर्ड है सूरत, दूसरा वर्ड है मंदिर, तीसरा वर्ड है मूरत। 1972 की फिल्म है, मैंने कहा था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है लेकिन उनके साथ लता जी की आवाज़ भी शामिल है। थैंक यू विजय जी, आपने कहा आप लता जी को भूल गई। रफ़ी साहब तो हैं, साथ में लता जी भी हैं और SD वर्मन का म्यूज़िक है। कौन सा गाना है बताइए, अगर आपको पता है तो नंबर तो आप हमारा जानते ही हैं। और तब तक मैं शुरू कर देती हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ दे दें जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लखविंदर वडाली लंदन में परफॉर्म करने जा रहे हैं, पंजाबी लेजेंड जिनके गाने, जिनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इस शो के लिए। दिस फ्राइडे 16 अक्टूबर को एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव और संडे को 18 अक्टूबर एट ICC बर्मिंघम में परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर आप भी इनके फैन हैं, इनकी आवाज़ के, इनके गीतों को पसंद करते हैं तो फ़ौरन टिकट्स बुक कराइए। लखविंदर वडाली लाइव इन कॉन्सर्ट इन लंदन एंड इन बर्मिंघम।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और अब आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।

0: ब्यूटीफुल गाना रफी साहब की आवाज में 1960 की फिल्म काला बाजार से लिया था, जिसमें एस टी बर्मन का म्यूजिक था, जिसे आपने सुना लाइका रेडियो नेटवर्क से। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अब बारी है दूसरा गीत सुनवाने की, लेकिन उससे पहले पुष्पा चौहान जी, थैंक यू, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आपको भी नवरात्रि की बधाइयाँ। और संध्या भाव सर, क्या बात है, सारे के सारे गाने मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो, बिल भिजवाती हूँ, हर गाना आप अपने नाम करवा रही हो, हैं? चलिए, थैंक यू, साथ दे रही हैं, बहुत अच्छा लगा। और आपको बता दें कि कविता कृष्णमूर्ति, लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म करने वाली हैं लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर, और ये आपके लिए लेकर आए हैं सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। टिकट्स आप बुक कर सकते हैं वेन्यू बॉक्स ऑफिस पर जाकर, और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं हम, यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा। This is Ritu Sharma. Like a gold. Part of the largest Asian commercial radio network in the UK.
3: Aap yun hi agar humse milte rahe, dekhiye ek din

0: एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें ओपी नैयर का म्यूजिक था और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और इस गाने को नाम करते हैं उन सभी के जिन्हें पसंद है, जिसमें शामिल है विजय गुडूरी, बॉबी जी, करसन पंडोरिया, जैस्मीन, स्वीटी कालराजी, चंदू शाह, पूरन कपूर, रोशनी जी। थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और अब समय आ गया है कि बता दूं किन साथियों ने सही सही जवाब दिया है हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले सवाल का। मनीषा शाह, विजय गुनोवा जी, संध्या भावसर, चंदू शाह, विजय गुडूरी, दिव्या जी हैरो से, करसन पिंडोरिया, मालती जी उल्लास टोरंटो से, भरत गंगाराम जी, अर्जुन जी, महेंद्र बजारिया जी, किरण हैरो से, नरेन पटेल, दिनेश पोपट जी, नीलकंठ बॉकिंगम से, सहर, यास्मीन बानो, शुमिला मंगर, तोची एन उषा खोड़ा। और अब सब ने सही जवाब दे ही दिया है, तो बता दे बजा देती हूँ आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथहॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए। उनके पास अफोर्डेबल दुबई ऑफर चल रहे हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव डील्स हैं सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स के की, जिनके साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं एमिरेट्स की। जस्ट 629 पाउंड्स पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स, ट्रैवल बाय 10th December। कॉल कीजिए साउथहॉल ट्रैवल को 0208-843-4444 और विजिट कीजिए southalltravel.co.uk पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: लीजिए अनुराग फिल्म से था ये गाना, और ये गाना इतना पॉपुलर है कि सबने बिल्कुल सही सही पहचान लिया, किसी ने भी आज मुझे गलत जवाब नहीं दिया। आप सबके लिए तालियां।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Like our gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए, 163 बांग्लादेशी टकास एंड 1.3 US डॉलर्स.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 101.9 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Leica
3: Gold.
0: लीजिए आपका और आज का, मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। आज आपने गीतों को पसंद किया, मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत आपको लेकर चलेगा न्यूज़ तक, और न्यूज़ के उस पार मेरे बाद होंगे अनुराग एक से चार Leica Gold पर, Leica Radio Manchester पर जय आपके साथ होंगे एक से चार, और Leica Radio Midlands पर आज आनंदी की जगह आपका साथ देंगी हमारी शाइनी शीना। एक से चार आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनवाएंगी, उनका साथ दीजिए, और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी यानी कि सैटरडे के दिन। और एक बार फिर से सभी को जय माता दी, जय माँ अम्बे, मज़े के साथ नवरात्रि मनाइए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
4: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.
1: This is Leica Gold.
5: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
6: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
8: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती, और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
9: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
8: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
9: बीकानेर वाला।
10: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
5: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
10: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
5: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
10: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
3: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
11: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA9 9PE. Come and share the joy of Navratri with us.
5: Sponsored by Star Tours. Switzerland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
12: Experience the magic of Mexico City, Cancun, Mayakoba, Tulum and Caribbean Islands with TravelHubWorld.com.
13: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
14: TravelHub, best service with unbeatable price.
15: At all protected.
14: Visit TravelHubWorld.com.
16: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
17: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
18: अंदाज आपका, चमक हमारी. खूबसूरत चेन सिर्फ £225 से शुरू. मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड. कॉल 0208767-7627.
19: It's Navrati. Best wishes from the Lyca Radio Network. Keep listening to special programming sponsored by Tilda, Star Tours and Jamin Foods. Up next, Golden Rock with Unrock on Lyca Gold.
20: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: कितनी खूबसूरत लाइन है भाई, तेरी तेरी खुशी से खुशी, तेरे गम से गम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। वारिस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे, मनमोहन सिंह साहब का इस उत्तम जगदीश साहब का इस फिल्म में संगीत है, और मनमोहन सिंह और लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस गाने को बना दिया अल्टीमेट। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों के प्यारे प्यारे संदेशों के लिए, खूबसूरत संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी का अभिनंदन, और नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को तहे दिल से बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, और हर तरह का कष्ट, हर तरह का विकार आपसे दूर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए सुपर संडे वाली महफिल में, जहाँ पर मिलता है सुरों का डबल डोज। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे अगले घंटे आप बताएं हम सुनने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए तैयार रहिए। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में, कमाल का गाना सुनने के लिए बेताब होंगे आप लोग, हमें पता है, लेकिन फिर भी थोड़े से अंतराल के बाद मिलते हैं आपसे। सुनते रहें लाइक आर नेटवर्क।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 रुपीज़ 50 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Sunshine, skyscrapers and souks.
5: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all prices.
6: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
7: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
8: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG63SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
9: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
12: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
12: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
16: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
17: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
16: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
18: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India. Bringing India closer.
19: Make your Diwali sparkle with award-winning Taj Foods. Diwali special offers are available now at supermarkets nationwide and Asian grocery stores near you. Taj Foods, bringing sparkle to your Diwali.
20: आज नवरात्रि का पहला दिन है. इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं. प्रार्थना की अब घड़ी आ गई. माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई. होगी अब मन की हर मुराद पूरी. भरने सबकी झोली माता रानी आ गई. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
21: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. स्कॉटलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
22: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Happy Halwai wala feel good Rafi sahab ki awaaz mein meetha meetha sa ye song tere ghar ke samne film ka ye khoobsurat sa nagma bhi aap sun rahe the aur अगला गीत मुकेश साहब और वानी जयराम जी की आवाज़ में छलिया फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है जो आपके दिल के को जरूर छलेगा. नाम ही इस फिल्म का है छलिया. सुनते हैं अगला गीत.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सीधे दिल पे डाका डालने वाला ये सुपर डुपर हिट गीत सुनने के बाद अब अगला गीत थोड़ा सा संस्कारी होने वाला है, क्योंकि हम अब थोड़ी सी भक्ति की तरफ भी ध्यान देंगे। रोमांटिक गीत तो आपके साथ प्ले हो ही रहे हैं आज नवरात्रि के स्पेशल मौके पर। अगला गीत आपके लिए फिल्म सुहाग से, और इसके बाद हम आपको बताएंगे क्यों जलानी है आपको दिमाग की बत्ती, क्योंकि क्या है आज का गोल्डन वर्ड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 अफगानी 85.87 पाकिस्तानी रुपीस 366 बांग्लादेशी टका 163 श्रीलंकन रुपीस 437.75 एंड 1 US डॉलर 1.32.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: रवि साहब और आशा दाई की आवाज में सुहाग फिल्म का ये भक्ति में सुपर हिट गीत आप सबके लिए नवरात्रि के एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगला घंटा आप बताएं हम सुनाने वाली थीम के लिए, जहां जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती। आज का गोल्डन वर्ड क्या है? वो है खूबसूरत सूरत। याद रखें, सूरत खूबसूरत, यह है आज का गोल्डन वर्ड। अपना फरमाइश का पिटारा खगालना शुरू करते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
3: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
3: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
4: कभी कभी। Catch the evergreen classic कभी कभी on its 50th anniversary.
5: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
4: This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase cinema.
5: हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे।
4: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
6: London तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
3: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
6: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
3: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
6: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
3: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG।
6: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
3: सेगा नवरात्रि, भक्ति मस्ती और गरबा।
7: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: ये कश्मीर है, बेमिसाल फिल्म का ये बेमिसाल सॉन्ग अभी आपने सुना। और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि आप बताएं हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड आप सभी को समझ में आ गया होगा, वो है खूबसूरत या फिर सूरत। तो दो गाने हमने आपको सुनाए, पहला गाना हमने फिल्म खूबसूरत से आपको सुनाया था अभिजीत और नीरजा पंडित जी की आवाज़ में। ये गाना हमने आपको अपने तरफ से सुनाया, यानी कि गोल्डन रा की सुपर संडे वाली महफिल की तरफ से। और अगला गीत बेमिसाल फिल्म का हम तक पहुंचाया गया था सुमिला मुंगर जी, करण पटेल जी और रांची जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, दिमाग की बत्ती जला लीजिए। अभी भी हमारे पास कुछ गानों की गुंजाइश बची हुई है। अगला गीत लता जी और किशोरदा की आवाज़ में, किसने भेजा है थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। दिमाग की बत्ती जल चुकी है और सुरों की महफिल जम चुकी है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
3: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the new properties Dubai London office today on 02 03 963 5757 to arrange your meeting. Start

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लता जी और किशोर दा की आवाज, फिल्म का नाम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, 1964 में फिल्म आई थी और ये गीत हम तक पहुंचाया है निम्बी जोहरा जी, करसन पिंडोरिया जी और राजीव पटेल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ही अगला गीत 90s के दिलों को धड़काने के लिए आ रहा है, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल आपके लिए।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आए हाय
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स गुडनेस इन एवरी बाइट ट्राई इट टुडे अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: भोली सी सूरत आंखों में मस्ती और ये गीत हम तक पहुंचाया है संतोष जी, राहुल जी और प्रीति जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। आप सुन रहे हैं सुपर संडे वाली महफिल, मैं हूँ आपके साथ अनुराग।
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
4: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel के साथ आप affordable Dubai deal का offer भी आपको मिल सकता है। Combine exclusive deal at selected partners hotel with direct flight with Emirates. Start हो रहा है £629 per person for 3 nights. Travel by 10th December. Call कीजिए Southall Travel को, number है 0208843444 or visit southalltravel.co.uk.
4: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
5: Like a gold.
6: On Rug with Golden Rug.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। 1969 में ये फिल्म आई थी और कमाल की ये फिल्म साबित भी हुई थी। और ये गीत हम तक, ये सॉन्ग हम तक पहुंचाया है विजय गोदोरे साहब, शांति जी और राखी पटेल जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
1: On Rag with Golden Rag. Like a extra podcast update.
0: Like a extra podcast episode number 37. टाइटल इस बार का है लाइका मैन अनफिल्टर्ड, होस्टेड बाय सैंडी शाह, फीचरिंग राज बदन, दीप राजा एंड विश भटनागर। और इसे सुनने के लिए हम बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: Like our gold.
3: Listen to that. The kids are finally in bed. Ah, time to sit back, relax, and crack open the HMRC app. Because now I've got 5 minutes peace, I can sort out child benefit and get round to updating things like our new address. It's handy for claiming tax refunds too. For your money and tax, download the HMRC app. You're on it.
4: Tune in to Navratri Hours on Laika Gold at 9 AM and Laika Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11, 11.
0: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
4: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
5: वेम्बली ना जूना अने जानीता पाटीदारो नवरात्रि नु आयोजन करे तो पछी एमा कई ज ना घटे.
6: OMB इवेंट एंड माणिक चौक लेने आया छे नवरात्रि 2026 गरबा क्वीन जानवी रावल साथे.
5: 10th ऑक्टोबर प्री नवरात्रि अने 11th थी 19th ऑक्टोबर नवरात्रि नी रमझट वेम्बली नी आर केल्विन स्कूल वेम्बली हाई रोड मा.
6: तो हालो सौ साथे मड़ी सहयोग आपो अने परिवार साथे गरबे घूमवा जोड़ाओ.
5: टिकट्स अवेलेबल एट माणिक चौक अने वधु माहिती माटे संपर्क करो भरत पटेल ने 0789171 7439. जय माताजी.

0: नाम बड़े और दर्शन छोटे, लता जी और सी रामचंद्र सी जी की आवाज में अलबेला 1951 में फिल्म आई थी, विंटेज गोल्ड वाला हमने आपको ये सॉन्ग सुनाया है। 300 से ज्यादा फिल्में की और भगवान दादा को कौन नहीं जानता है, और ये पहली फिल्म उनकी। इस फिल्म का ये गाना हो चाहे शोला जो भड़के गाना हो, रातों रात इन्हें स्टार बनाने के लिए काफी था। और शोमैन राज कपूर साहब भगवान दादा को इंडियन डगलस कहते थे क्योंकि वो अपने स्टंट खुद किया करते थे। और ये गीत हम तक पहुंचाया है, किसने पहुंचाया है? वत्सला जी, रमन जी और नरेंद्र पांचाल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.12, अफगानी 85.90, पाकिस्तानी रुपीस 366.61, बांग्लादेशी टका 162.97, श्रीलंकन रुपीस 437.79 एंड 1 US डॉलर 1.32.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.94 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी की आवाज में दर्द फिल्म का ये बेहद ही शानदार सॉन्ग। और अब वक्त आ गया है दिल की नहीं, मतलब दिमाग की नहीं, माफ कीजिएगा, दिल की बत्ती जलाने का और हमें बताने का आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आता है। कायदे प्लस कानून ये है कि तीन होंगे ऑप्शंस गाने के, ए बी एन सी। जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए उसे वोट की तरह हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर कास्ट करें। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गीत, वो सॉन्ग, वो नगमा हमेशा की तरह भारी मतों के साथ बनेगा आज का गोल्डन राग। और स्पेशल क्या है, कल की तरह स्पेशल है आज। कल था रेखा जी और आज है बच्चन साहब का शुभ जन्मदिन, हैप्पी वाला बर्थडे। 11 अक्टूबर 1942 को इनका हुआ था जन्म। अमिताभ श्रीवास्तव, जिन्हें हम अमिताभ बच्चन जी के नाम से जानते हैं, अलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में अलाहाबाद करके एक जगह है, शहर बड़ा ही प्यारा, जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर बच्चन साहब ने जन्म लिया था और इसके बाद सदी के महानायक बने हैं। और आज हमने तीन गोल्डन राग के ऑप्शंस इन्हीं की फिल्मों से आपके लिए चुने हैं। बिना वक्त गवाए जल्दी से बताते हैं क्या है वो तीन ऑप्शंस बच्चन साहब की फिल्म से जुड़े हुए। ऑप्शन ए है, दो लफ्जों की है ये कहानी, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। ऑप्शन बी, तुमसे दूर रहकर मैंने जाना प्यार क्या है, फिल्म का नाम है अदालत। ऑप्शन सी है, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहेंगे, फिल्म का नाम है जमीर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ऑप्शंस आज के गोल्डन राग के, जो कि हैं हमारे बर्थडे बॉय बच्चन साहब की फिल्मों से जुड़े हुए। ऑप्शन ए है, दो लफ्जों की है ये कहानी, फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। ऑप्शन बी, तुमसे दूर रहकर मैंने जाना प्यार क्या है, फिल्म का नाम है अदालत। और ऑप्शन सी है, तुम भी चलो हम भी चलें, फिल्म का नाम है जमीर। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। अगला गीत हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक की फिल्म दिल से जुड़ा हुआ, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 रुपीज़ 50 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold.
3: Sunshine, skyscrapers and souks
4: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
5: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
7: वेम्बली ना जूना अने जानीता पाटीदारो नवरात्रि नू आयोजन करे तो पछी एमा कहीं ना घटे।
8: OMB इवेंट एंड माणिक चौक लेने आव्या छे नवरात्रि 2026 गरबा क्वीन जानवी रावल साथे।
7: 10th ऑक्टोबरे प्री नवरात्रि अने 11th थी 19th ऑक्टोबर नवरात्रि नी रमझट वेम्बली नी आर केल्विन स्कूल वेम्बली हाई रोड मा।
8: तो हालो सौ साथे मळी सहयोग आपो अने परिवार साथे गरबे घूमवा जोड़ाओ।
7: टिकट्स अवेलेबल एट माणिक चौक अने वधु माहिती माटे संपर्क करो भरत पटेल ने 0789171 7439।
9: माताजी।
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months, featuring views, oases, oceans, elites, fashions, and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA9 9PE. Come and share the joy of Navratri with us.
13: Sponsored by Star Tours. Switzerland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.

0: हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक आनंद मिलिन साहब की म्यूजिक से सजा दिल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और एक बार फिर से आपके लिए कर रहे हैं रिपीट आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस, जो कि है ऑप्शन ए, दो लफ्जों की है ये कहानी, फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर, ऑप्शन बी, तुमसे दूर रहकर मैंने जाना प्यार क्या है, फिल्म का नाम है अदालत, ऑप्शन सी, तुम भी चलो हम भी चलें, फिल्म का नाम है जमीर। वोटिंग लाइंस ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें और सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Free. London, get ready for an unforgettable night.
1: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
1: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
2: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
2: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
4: Let's go to Vegas, Los Angeles, New York, Miami and Disneyland Orlando with travelhubworld.com.
5: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call travelhub 24/7 on 0208 782 8833.
4: Travelhub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
6: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208 767 7627।
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
11: गुरु गुरु,
12: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
11: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
12: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
10: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र।
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
14: टू बुक कॉल 0208 514 5400, book online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
15: On Rug with Golden Rug. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: किशोर दा की आवाज में जमीर फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत संगीत आया था, म्यूजिक आया था सपन चक्रवर्ती की तरफ से, और इस गीत को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। नाम लेना शुरू करते हैं, अमिता जी, मीना शाह जी, नंदा प्रवीण जी, वत्सला जी, सालिग्राम साहब, महेंद्र पटेल जी, के भामरा, अमित पटेल, उल्लास जी, किशोर लाडवा, हना जी, अर्जुन साहब, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा, कंचन जी, रोजी, प्रशांत और समीर। एक और लिस्ट का नाम लेने जा रहा हूँ, जल्दी से लेता हूँ, समझ जाएंगे कौन सा गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, क्योंकि बच्चन साहब का बर्थडे है भाई। संतोष जी, रिजवान शाह, विजय सिंह, किरण फ्रॉम हैरो, टोची पनेसर, विजय गोदोरे, अयुब चौहान, प्रवीण, शौकत, अमन, प्रमोद, शाकिर, कल्पना पटेल और मोहम्मद जहूर। आपने भी जिस गाने को वोट दिया वो गाना भी प्ले करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट। अब होगी आपसे अगले सप्ताह अगले वीकेंड मुलाकात, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट आ रही है सरता जी, बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल।
3: जॉइन लेजेंडरी सिंगर कविता कृष्णा मूर्ति
2: लाइव ऑन संडे द 1st ऑफ नवंबर। An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11.
3: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place.
3: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties.
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक your table today.

0: गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए गाने चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और इस कैसे खुशी होगी, जब मुझे एहसास दिलाएंगे आप कि आप मेरे आसपास हैं, मेरे साथ साथ हैं। मैं अकेली स्टूडियो में ऐसे ही माइक्रोफोन के पीछे से बोल नहीं रही हूँ। मैं आपका मनोरंजन करने में कितने प्रतिशत मैं कामयाब होती हूँ, इसका भी मुझे तभी पता चलता है जब आपके मैसेजेस धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्क्रीन पर गिरते रहते हैं। थैंक यू एवर सो मच, कितने सारे मैसेजेस ऑलरेडी मुझ तक पहुंच गए हैं। तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और मैं चाहूँगी ये प्यार, ये मोहब्बत इसी तरह से बनी रहे और ऐसे ही आप सरिता को अपने दिल में जगह देते रहें। आज ख़ास दिन है, और ख़ास दिन ये है कि आज से नवरात्रि शुरू हुए हैं। आप सभी बहन भाइयों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, माता रानी की छत्र छाया आपके सर पर हमेशा रहे, उनका आशीर्वाद रहे, आपके सभी काम सीधे होते रहें और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और यश रहे हमेशा। बच्चों में प्यार, माँ बाप में प्यार और सारे रिश्तेदारों में भी प्यार बना रहे और माँ की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। ये तो थी वही माता की नवरात्रि की शुभकामनाएं मैंने आप तक पहुंचाई। और आज ख़ास दिन ये भी है कि आज कौन सदी के महानायक जिन्हें माना जाता है, वो हैं अमिताभ बच्चन। आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिनकी आवाज़ में जादू है, जिनकी आँखों में है अभिनय की गहराई और जिनके पर्सनालिटी में बसता है पूरे हिंदुस्तान का प्यार। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड के शहंशाह, सदी के महानायक, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की। 11 अक्टूबर 1942 में 1942 में जन्मे अमिताभ बच्चन जी ने अपने शानदार अभिनय, दमदार आवाज़, इतनी डेप्थ है उनकी आवाज़ में, और बेमिसाल मेहनत से भारतीय सिनेमा में एक ऐसी पहचान बनाई जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जंजीर से लेकर जितनी भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, सभी यादगार फिल्में हैं। जंजीर से मिली नई पहचान हो या दीवार का यादगार अंदाज, शोले का जय हो या डॉन का दमदार किरदार। इनफैक्ट आज मैं डॉन थोड़ी थोड़ी देख रही थी, बीच बीच में अपने काम कर रही थी लेकिन डॉन दिखाई जा रही थी टेलीविज़न पर, तो थोड़े भूली बिसरी यादें ताज़ा भी हो गई। अमिताभ बच्चन जी ने हर भूमिका को अपने अभिनय से अमर बना दिया। उनकी आवाज़ की बात ही कुछ और है। जब उनकी आवाज़ गूंजती है तो लगता है जैसे हर शब्द अपने आप में एक कहानी कर रहा हो। वैसे अमित जी ने सिर्फ फिल्मों में अपने डायलॉग्स नहीं बोले हैं, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने कमेंट्री या बैकग्राउंड में जो आवाज़ होती है वो उन फिल्मों में अपनी आवाज़ देकर भी उन फिल्मों को की इंट्रोडक्शन को भी एक अलग सी पहचान दे दी है। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे लगान ही है। एंड लेकिन अमिताभ बच्चन जी की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, असफलता। जी हाँ, बहुत सी असफलताएँ भी मिली हैं उन्हें। बहुत पहले पहले तो लोग उन्हें कहते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के, अरे इतने लंबे हो, टांगे कटवा के आओ, दिस एंड दैट, बहुत कुछ सुनने को उन्हें मिला था। कौन सी हीरोइन तुम्हारे साथ काम करेगी, तुम इतने लंबे हो, वो सब छोटे कद की हैं। पर देखिए ना, जब ऐसी असफलताएं मिलती हैं तो उनसे लड़ने के लिए जज्बा भी आ जाता है हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटने की उनमें एक क्षमता रही। उन्होंने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, हौसला और मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और कौन भूल सकता है उनका लोकप्रिय अंदाज, उनकी गंभीर आवाज़, कौन बनेगा करोड़पति के मंच से उनका आवाज़ गूंजती है और इतना अच्छा लगता है, इतना अपनापन लगता है और जो हर घर तक पहुंचता है। बहुत सी बातें हैं जो करना चाहूँगी, अपनी उनसे मुलाकातों के बारे में भी बात करना चाहूँगी, लेकिन बाकी के काम करना भी बहुत ज़रूरी है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बहुत ही आसान है। You can walk into the branch, you can go online, और SBI Yono mobile app download किया हुआ है तो उसके जरिए घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Terms and conditions are always there, and आज आपका one British sterling pound can get you 127 rupees and 50 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Like a
2: sunshine, skyscrapers and souks.
3: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protect.
4: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
5: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
4: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
5: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
4: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
5: 07956458872।
4: तो मिलते हैं गरबा में।
6: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
7: बीकानेर वाला परंपरा भी।
6: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।
7: बीकानेर वाला।
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Shri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA9 9PE. Come and share the joy of Navratri with us.
10: Sponsored by Star Tours. Switzerland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
11: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com।
12: कलाई पर हीरे, चेहरे पर मुस्कान, डायमंड टेनिस ब्रेसलेट £2,500 से शुरू। मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड। कॉल 0208767 7627। मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड स्पेशलिस्ट्स।
13: Craving the taste of home this festive season?
12: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
13: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today.
14: Haldiram's.
15: It's Navrati. Best wishes from the Leica Radio Network. Keep listening to special programming sponsored by Tilda, Star Tours and Jamin Foods.
16: વેમ્બલીના જૂના અને જાણીતા પાટીદારો નવરાત્રીનું આયોજન કરે તો પછી એમાં કંઈ જ ના ઘટે.
17: OMB ઇવેન્ટ એન્ડ માણેક ચોક લઈને આવ્યા છે નવરાત્રી 2026 ગરબા ક્વીન જાનવી રાવલ સાથે.
16: 10th ઓક્ટોબરે પ્રી નવરાત્રી અને 11th થી 19th ઓક્ટોબર નવરાત્રીની રમઝટ વેમ્બલીની આર કેલ્વિન સ્કૂલ વેમ્બલી હાઈ રોડમાં.
17: તો હાલો સૌ સાથે મળી સહયોગ આપો અને પરિવાર સાથે ગરબે ઘૂમવા જોડાઓ.
16: ટિકિટ્સ અવેલેબલ એટ માણેક ચોક અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો ભરત પટેલને 07891717439. जय माता जी।
12: आज नवरात्रि का पहला दिन है. इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं. प्रार्थना की अब घड़ी आ गई. माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई. होगी अब मन की हर मुराद पूरी. भरने सबकी झोली माता रानी आ गई. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
10: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. स्कॉटलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.

0: Lycagoon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and Lycagoon.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: Kishore Da and Asha Bhosle ji ki awaaz hai, Smita Patil and Amit ji par ye gana picturized hua tha. जैसे कि मैंने पहले कहा था, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन देखती हैं वक्त कहाँ तक इजाज़त देता है. अमित जी, आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई है. ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुशियाँ दे, लंबी उम्र दे. आप यूं ही अपनी कला से करोड़ों दिलों को रोशन करते रहें. बहुत से मेरे साथी मैसेजेस लिख कर भेज रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच.

0: 1982 में आई इस फिल्म ने दर्शकों को कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और एंटरटेनमेंट का ऐसा तड़का दिया था कि आज भी इसके गाने और डायलॉग्स लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और अमिताभ बच्चन का किरदार अर्जुन सिंह, नमक हलाल का ये गाना था। अर्जुन सिंह एक सीधा साधा भोला भाला लेकिन अपने ही अंदाज में कमाल का इंसान था, जो अपनी बात कहने के लिए किसी बड़े शब्दकोश का इस्तेमाल नहीं करते थे। आपको याद है वो जब आई कैन टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश वाला डायलॉग क्या कितना फेमस हुआ था? इनकी एक्टिंग का जवाब ही नहीं। अमी जी को बहुत बहुत बधाई।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: जैसा कि मैंने कहा कि आज ही मैंने ये फिल्म देखी थोड़ी सी, डॉन। बहुत प्यारी फिल्म थी, इसके तो सीक्वल भी बने, लेकिन वो बात कहाँ। अमिताभ बच्चन के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज थे इस फिल्म में, एक तरफ खतरनाक डॉन तो दूसरी तरफ भोला भाला।

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627।
3: डिस्कवर रियो डे जनेरो साओ पाउलो इन ब्राजील माचू पिचू एंड कुस्को इन पेरू विद travelhubworld.com
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 02087 82883
3: Travel Hub best service with unbeatable price
4: at all protected
3: visit travelhubworld.com
5: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 AM and Leica Radio at 7 PM. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
6: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
7: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: Welcome to the second hour of the show. It's nearly 14 minutes after 5 o'clock. Very good evening to you. और अगर आपने अभी अभी सुनना शुरू किया है तो 4 बजे कहाँ थे भाई? 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारे मिलने का समय होता है और मैं चाहती हूँ कि आप 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने कान मुझे उधार दे दें. That's it. और कोई ज़्यादा कुछ तो मांगती नहीं हूँ आपसे. और जो भी काम करना चाहते हैं वो करते रहिए. सिर्फ और सिर्फ मुझे तो आपके कान चाहिए होते हैं और इन कानों में मधुर रस खोलती रहूँ, अच्छे अच्छे गीत आपको सुनवाती रहूँ, अच्छी बातें करती रहूँ. बस मैं तो यही चाहती हूँ. अब दो गीत आपने बैक टू बैक ही सावर में सुन लिए और दोनों गीत क्यों मैंने शामिल किए इसकी भी एक वजह है. पहला गीत था फिल्म दाग से, दाग द फायर. 1999 में आई थी ये फिल्म एंड इस फिल्म में कौन थे? चंद्रचूर सिंह और साथ में संजय दत्त भी थे, महिमा चौधरी थी इस फिल्म में. और फिल्म बहुत खूबसूरत थी और इस फिल्म के सारे गाने भी बड़े ज़बरदस्त थे. एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इस फिल्म का संगीत था राजेश रोशन जी का. चंद्रचूर सिंह अ प्रोमिनेंट फिगर इन हिंदी सिनेमा ड्यूरिंग द 90s एंड केम विद lots of promises with his role in Tere Mere Sapne and Gulzar Saab Ki Machis mein bhi. Aur initially inhe bahut praise mili thi for his good looks and intense grounding acting. Aur Chandrachur Singh lost his way and was rarely seen in the last two decades. So kya hua pata nahi, lekin achhe actor the. Jin bhi filmon mein kaam kiya inhone achhi thi film. Inka janm hua tha aaj hi ke din 11th October in 1968 in अलीगढ़ उत्तर प्रदेश. एंड इनकी जर्नी शुरू हुई थी वेल हिज फादर कैप्टन बलदेव सिंह वॉज एन आर्मी ऑफिसर एंड एन एक्स MLA फॉर खायर अलीगढ़ में एक जगह है. एंड वाइल हिज मदर कृष्णा कुमारी देवी हेल्स फ्रॉम रॉयल लीनेज ऑफ इन उड़ीसा. सो इनका शौक था बचपन से कि मैं फिल्मों में आऊँ. ही इज़ अ ट्रेन इंडियन क्लासिकल सिंगर एंड बिफोर स्टेपिंग इन टू द लाइम लाइट ही इम्पार्टेड नॉलेज एज ए म्यूजिक टीचर एट वसंत वैली स्कूल and taught history at his alma mater Doon School. So 1996 में इनका डेब्यू हुआ था तेरे मेरे सपने फिल्म से, प्रोड्यूस्ड बाय अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन. आपको याद है इनका एक प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने इस फिल्म को बनाया था एंड उसमें चंद्रचूर सबसे पहले नज़र आए थे. हाउएवर इट वाज हिज रोल इन गुलजार्स माचिस अ फिल्म दैट वाज लाइक बाय मैनी. पंजाब के बारे में स्टोरी थी और वन हिम द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर के तौर पर. और इनके काम को काफ़ी पसंद किया गया. एंड देन इनकी फिल्मोग्राफी में आती है ये फिल्म दाग द फायर विद महिमा चौधरी, क्या कहना विद प्रीति जिंता. देन जोश में थे ये ऐश्वर्या राय के साथ. एंड और भी कुछ एक फिल्मों में इन्होंने काम किया लाइक बेताबी 97, घनश्याम श्याम घनश्याम इन 1998, दिल क्या करे में 1999 में दिखाई दिए थे एंड दाग द फायर भी 99 में आई थी. सिलसिला है प्यार का वो भी 1999 की फिल्म थी. एंड आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया फिर 2000 का दौर शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारी फिल्म में नहीं आए हैं. आज अपना बर्थडे मना रहे हैं तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं चंद्रचूर सिंह जी को. और अल्ताफ राजा, वेल कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्मदिन आज है 11th अक्टूबर, और विकिपीडिया पे देखें तो 15th अक्टूबर को है. तो बाली जी तो उनका ख़ास प्रोग्राम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे. चलिए मैंने एक गीत लगाया और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया. इनसे भी मुलाकात हुई, इनको इंटरव्यू भी करने का मौका मिला एंड शोज भी इनका एक शो था उसमें भी हम गए थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर तोशी जी, आप भी थी वहाँ पर और आपके हस्बैंड भी. बहुत अच्छा लगा था आप सबसे मिलकर. सो चंद्रचूर जी को मुबारक आज उनके जन्मदिवस पर. अल्ताफ राजा अगर आज अपना बर्थडे मना रहे हैं तो इन्हें बहुत बहुत मुबारक. अगर 15th को है तो तब भी हमने एडवांस में इन्हें हैप्पी बर्थडे कह दिया.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इनके द्वारा पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है. यू कैन गो इन टू द ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आज आपको ये दे रहे हैं 127 rupees and 45 paisas.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At OXO, we know us Brits can be rubbish at saying how we really feel. Sometimes food just says it better. Whether it's a spag bol peace offering, a date night risotto, or some chicken soup TLC. You can say it without saying it. We've got you. Just crumble in some of that original OXO flavour for a meal that means a whole lot more. OXO. Let the flavour do the talking.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: That's my orchestra of rubber ducks playing for me whilst I soak in a bubble bath. Yes, I have rubber ducks playing for me. I wish I could tell you that checking your tax and making any claims on the HMRC app felt like this. But I wouldn't go that far. Although, it is easier, and it will make you feel that little bit more on it.
4: For your money and tax, download the HMRC app and be on it today. You're on it.
5: गरम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा.
6: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम.
5: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA.
6: रात 8 बजे से देर रात तक. टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट. 5 साल से छोटे बच्चे फ्री.
5: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए. टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
6: 07956458872.
5: तो मिलते हैं गरबा में.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
9: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL.
8: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
9: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा.
8: कॉल प्रथम पटेल 07838302450.
10: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events on Tuesday, 13th October at the Willows Forest Road, Ilford, IG63SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
11: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
12: This Diwali, celebrate with Shayona.
13: Enjoy Mathia and Chorafali. Mix and match any three for just £4.50.
12: Discover our delicious range of fresh UK-made mithai, available at Shayona stores.
13: Visit our new Honeypot Lane store for all your snacking needs, including fresh hot food. Find selected Shayona lines at Morrison's, Tesco and Sainsbury's throughout the Diwali season.
12: Shop in-store or online at shayonauk.com. Shayona, swaad jit tehwar ne banave khas. We'll be right back.

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer. आज नवरात्रि का पहला दिन है. इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ को गाय के घी का भोग अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के संकट दूर होते हैं. प्रार्थना की अब घड़ी आ गई. माँ शैलपुत्री आपके द्वार आ गई. होगी अब मन की हर मुराद पूरी. भरने सबकी झोली माता रानी आ गई. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
4: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई मेरे अंगने में तो आपका काम है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी स्टूडियो में और आप पता नहीं सुन के भी सुना करेंगे या फिर मुझे अपने होने का एहसास दिलाएंगे। वैसे आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं। मीरा जी थैंक यू सो मच, कह रही है मज़ा आ रहा है। और मेरे साथियों ने कहा कि क्यों नहीं आप अमित जी की ही फिल्मों के कुछ और गीत सुनाते, तो इसीलिए मैंने लवारिस का गीत शामिल कर दिया। और उनकी आवाज़ और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत से गीत गाए हैं उन्होंने, उन्हीं में से मैंने चुना है इस गीत को भी। एंड रोनित रॉय इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो आई विल ट्राई इस आवर में और इन नेक्स्ट आवर इंतशाब आपकी फरमाइश को भी मैं पूरा करूंगी। एंड स्वीटी कालरा जी, रजिंदर सिंह कालरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रजिंदर जी आपने लिखा है कि सरिता कैन यू प्ले दोस्ताना का गाना, ये किस्सा क्या हो गया जिसमें दोनों का ब्रेकअप होता है। पर दोस्ताना का एक गीत मैं ऑलरेडी लास्ट आवर में प्ले कर चुकी हूँ, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तो आई एम सॉरी आज पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाकी के सभी गीत आपको पसंद आ रहे हैं। एंड बहुत से मेरे साथी कल शोले जो देख कर आए रॉयल अल्बर्ट हॉल में, उसका भी जिक्र कर रहे हैं और कहा कि बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो और आपने इंजॉय किया। राज जी आपका भी मैसेज मुझे मिल गया है। विनी विनोद एंड वरुण जी थैंक यू। भारती, परविंदर, मठारू जी, विमल रायन, जैस्मिन, हाना, संतोष फ्रॉम हैरो, सहर जी, अरुणा जी, मृदु जी, जगदीश जी फ्रॉम बुशी, संध्या भावसर जी, महेंद्र बरजारिया एस फ्रॉम हैरो एंड विजय गुजरे सटन में सुन रहे हैं, वत्सला जी, अमिता जी, भरत गंगाराम जी, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, अनिल जी, आप सभी का तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर्षदा लिम्बानी थैंक यू। एंड दिव्या इन हैरो, सलमा इन मेडस्टोन, फरीदा गुलाम अली जी एंड उल्लास इन टोरंटो, हरप्रीत जी थैंक यू, आप वैंकूवर में सुन रहे हैं, हसमती हसू जी और जगतार जी आप नहीं आए आज वैंकूवर से, कहाँ हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं, खुश हैं और खैरियत से हैं। और जिनके नाम मैं लेना भूल गई हूँ उनसे माफ़ी चाहती हूँ। अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस शेख थैंक यू। एंड तोशी जी आप भी सुन रही हैं, आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं अपने होने का एहसास दिलाइए। यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ लाइन।
0: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स।
2: अनदर ब्यूटीफुल हिट गाना, कम ऑन शुरू हो जाए इसके साथ।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: क्या बात है, कितना खूबसूरत गीत था। और आप भी तो इन गीतों के दीवाने हैं ना, बार बार मैसेजेस मुझे लिखकर भेज रहे हैं, सही था मज़ा आ गया। तो उसके लिए मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं और मुझे बता देते हैं कि आपको मेरे चुने हुए गीत पसंद आ रहे हैं। तो अब ज़रा ये काम भी कर लें।
2: दिस इज सरिता सबोवाल ऑन लाइक अ गोल्ड।
1: बता दूं, मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ कि लखविंदर वडाली आ रहे हैं इन कॉन्सर्ट ऑन फ्राइडे 16th अक्टूबर को एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ एंड संडे 18th अक्टूबर को ICC बर्मिंगम में। और लेजेंडरी सिंगर कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं परफॉर्म लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st of November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू आप ले सकते हैं उनके बॉक्स ऑफिस से, या फिर आप सनातन लाइव जो हैं उनसे भी ले सकते हैं, सनातन जो स्पॉन्सर हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं। एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं कौन, लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: सरिता सबोवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका गोल्ड, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: चलिए बता दें आपको जल्दी कि इस बारी लाइका एक्स्ट्रा के पॉडकास्ट में क्या है। दिस इज एपिसोड 37, लाइका मेन एंड अनफिल्टर्ड है ये, होस्टेड बाय सैंडी शाह, फीचरिंग राज बदन, दीप राजा एंड विश पटनागर। एंड इट्स ऑल अबाउट मेल प्रेजेंटर्स कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, आर वीमेन बेटर रेडियो प्रेजेंटर, शुड इन्फ्लुएंसर्स रियली गेट अ शॉट बिहाइंड द माइक। एंड बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि क्या इनमें ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या होता है। जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पॉडकास्ट। एंड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज़ हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
3: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it won't be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
2: ये है लाइका गोल्ड।
7: Sunshine, skyscrapers and souks.
8: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
7: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
7: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all protected.
9: વેમ્બલીના જૂના અને જાણીતા પાટીદારો નવરાત્રીનું આયોજન કરે તો પછી એમાં કંઈ જ ના ઘટે।
7: ઓએમબી ઇવેન્ટ એન્ડ માણેક ચોક લઈને આવ્યા છે નવરાત્રી 2026 ગરબા ક્વીન જાનવી રાવલ સાથે।
9: 10th ઓક્ટોબરે પ્રી નવરાત્રી અને 11th થી 19th ઓક્ટોબર નવરાત્રીની રમઝટ વેમ્બલીની આર કેલ્વિન સ્કૂલ, વેમ્બલી હાઈ રોડમાં।
7: તો હાલો સૌ સાથે મળી સહયોગ આપો અને પરિવાર સાથે ગરબે ઘૂમવા જોડાઓ।
9: ટિકિટ્સ અવેલેબલ એટ માણેક ચોક અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો ભરત પટેલને 0789171743। जय माता जी।
10: London, get ready for an unforgettable night.
11: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
10: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
11: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
10: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
11: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
10: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तोबा तोबा क्या होगा, होना है जो वो होगा।

0: लास्ट आवर है प्रोग्राम का और पहले दो गीत बैक टू बैक आपने सुने एंड दोनों गीत बहुत प्यारे थे और आपने भी लिखा है कि सरिता दोनों ही बैक टू बैक गाने बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। पहला गीत था फ्रॉम द फिल्म जान तेरे नाम, 1992 में आई थी ये फिल्म जान तेरे नाम, जिसे दीपक बलराज विज ने डायरेक्ट किया था एंड रोनित रॉय केम एज ए हीरो इन दिस फिल्म। हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, तो रोनित रॉय को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ही इज़ एन इंडियन एक्टर, ही इज़ वर्कड ऑन टेलीविजन, बहुत टेलीविजन पर भी, क्योंकि सास भी बहू थी उसमें भी पहले आया करते थे रोनित रॉय ही। मिहिर बन के आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू विश। एंड उसके बाद ये वेब सीरीज में आ रहे हैं, यस ऋषभ बजाज बन के आए थे, सॉरी ऋषभ बजाज थे ये कसौटी में, कसौटी जिंदगी की उसमें भी थे और इनके काम को काफ़ी सराहा जाता है एंड ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर इन टेलीविजन एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में। रोनित रॉय और फरहीन थी इस फिल्म की हीरोइन, नदीम श्रवण का था संगीत। इस फिल्म का एक और गाना बड़ा मशहूर हुआ था, इफ़ यू डू रिमेंबर, कौन सा गाना था वो, हम लाख छुपाएं प्यार मगर, समथिंग लाइक दैट, कुमार सानू और आशा भोसले ने गाया था उस गीत को, तो वो गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसी में एक और गीत था, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, वो वाला गीत भी अच्छा चला था। तो रोनित जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा गीत मैंने फिल्म कालिया से चुना था, अगेन अमिताभ बच्चन जी की फिल्म का गीत था, इनके साथ थी परवीन बॉबी एंड साथ में आशा फारी, कादर खान ने इस फिल्म में काम किया था, अमजद खान भी थे इस फिल्म में एंड प्राण जी भी एंड टीनू आनंद ने इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा था और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे सारे गाने। और बता दूँ कि वो गाना था ना जहाँ तेरी नज़र है, जहाँ ये तेरी नज़र है, फिर ये गाना यूज़ हुआ था पलट तेरा हीरो इधर है, मैं तेरे हीरो फिल्म में भी वो गीत आया था। सो उसका क्रेडिट जो है कहते हैं कि कंपोज किया था वो अमिताभ बच्चन जी ने, पर आज के प्रोग्राम में मैंने वो गीत शामिल नहीं किया है, बल्कि ये गीत मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा किशोरदा एंड आशा भोसले जी की आवाज़ों में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right B, अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। You can walk into the branch, you can go online and do it. And अगर Yono SBI का आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कीजिएगा। और आज आपको ये एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले दे रहे हैं 127 rupees and 50 paisas.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: Right B, ab maine do geet chune hain film Baghi se. एंड दोनों गीतों में से एक गीत मैंने आप तक पहुंचाना है क्योंकि वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक के लिए मैंने आनंद मिलन का संगीत है, तो फिल्म बागी के दो गाने चुने हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा गाना छोड़ दूं और कौन सा गाना आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो जल्दी से अपने अपने वोट्स दे दीजिए। ए है हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, वो वाला गीत सुनना चाहेंगे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। और दूसरा गीत है कैसा लगता है अच्छा लगता है, अमित कुमार एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें। सो दोनों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, यू गॉट अबाउट 3 मिनट्स, जल्दी से डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा। ए हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की और बी कैसा लगता है, जल्दी से बताइए।
2: Sorry for the voice note, but can we get a takeaway tonight, Mum?
3: Oh, no, no. We've got leftovers in the fridge. They'll do. It'd be nice.
4: Sorry. I've eaten it. Who's for pizza?
5: Pizza!
6: Sure, we can give you lots of data, but what really matters is friends and family. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile. It pays to be connected. Terms apply. See tescomobile.com/ytescomobile.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
5: Gold. Oh, look at that bump. You're glowing.
7: Oh, thanks.
5: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
7: Oh, no, not yet.
5: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
8: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong, get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.
9: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
10: बीकानेर वाला परंपरा भी।
9: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी।
10: बीकानेर वाला।
11: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: भी आपका भी साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ये फिल्म थी बागी, जिसका संगीत दिया था आनंद मिलन ने, इस फिल्म में काम किया था सलमान खान ने, और इनकी हीरोइन थी नगमा। गीत बहुत खूबसूरत था, अमित कुमार एंड अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आप तक पहुँचा।
1: Good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म अनीता से चुना था मैंने इस गीत को। इफ़ यू रिमेंबर, कल मैंने इस फिल्म का एक गीत सुनाया था तो बहुत से मेरे साथियों ने कहा था कि वी वुड लव टू लिसन टू दिस वन। सो आज के प्रोग्राम में मैंने ये गीत आप तक पहुंचाया, लेकिन किसने स्पॉन्सर किया इस गीत को वो जान लीजिएगा।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a go. जी हाँ, मेरे बहुत से साथियों ने कहा था कैसा ऐसा लगता है, अच्छा लगता है वो वाला गीत सुनने के लिए। विजय जी, साक्षी जी, अर्जुन जी, प्रज्ञा जी, इंतशाब, संध्या जी, मीरा जी, स्वीटी जी, आप सबकी यही पसंद थी तो प्रोग्राम में शामिल हुई। अब ज़रा ये भी बता दूं आपको कि लाइका रेडियो नेटवर्क टीम आप विद साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल फॉर 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म बींग स्क्रीन एट अ शो के सिनेमा नियर यू। कभी कभी आप देख सकते हैं आज, वेल आज थी और दिल चाहता है ऑन संडे 18 अक्टूबर। बुक योर टिकट्स एट showcasecinema.co.uk/SAFFUK।
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साउथ ऑल ट्रैवल वालों का ये मैसेज है कि साउथ ऑल ट्रैवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद द एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर 3 nights. ट्रैवल बाय 10th of December. कॉल साउथ ऑल ट्रैवल ऑन 0208-843-4444 और विजिट southalltravel.co.uk.
1: were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Let's stop there. Being a soldier, it's exciting. You already know that. What you want to know is, what's in it for me? I wanted to learn leadership skills from the experts.
4: I wanted to get paid to earn qualifications.
5: I wanted more confidence. And now look, I'm on the radio.
6: That's what was in it for me.
3: Get skills, get qualified, get confident. Army, recruiting now. Search Army Jobs.
1: This is Leica Gold.
7: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
8: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
7: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
8: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फात्सुमा।
7: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी साहब का लिखा गीत और फिल्म रोटी से हमने चुना था इस गीत को। और गीत बहुत खूबसूरत था, जिसे गाया किसने था, लता जी ने एंड किशोर दा ने। और इसे आज के प्रोग्राम में शामिल करने की वजह ये थी कि ये फिल्म आज ही के दिन इन 1974 में रिलीज़ हुई थी, जिसे मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था, कादर खान ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, आनंद बख्शी साहब ने लिरिक्स लिखे थे। एंड फिल्म बहुत खूबसूरत थी, इसका थीम बहुत अच्छा था, स्टोरी बहुत खूबसूरत थी। राजेश खन्ना उस टाइम पीक पर थे और राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी मुमताज़, दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। आपने ये फिल्म देखी हुई है? अगर देखी हुई है तो मुझे ज़रा जल्दी से बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। वो दौर इन दोनों का ही था, राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर की जोड़ी या राजेश खन्ना एंड मुमताज़ की जोड़ी को बहुत बहुत पसंद किया जाता था। तो आप भी बता दें कि आपने ये फिल्म कौन से ईयर में देखी थी, किसके साथ देखी थी, कहाँ पर देखी थी, जल्दी से व्हाट्सएप करके बताइए। और बता दूं कि ये गीत आप तक किसने पहुंचाया?
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: भाई, जो मेरे साथ ही बराबर मैसेजेस लिख रहे हैं उनमें मैं विमल जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, परविंदर मठारू जी थैंक यू, राजेंद्र सिंह कालरा जी आपने भी मैसेज लिखा है, प्रज्ञा जोशी थैंक यू, इंतशाब आपका भी, एंड वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंतशाब आप भी सुन रही हैं और जान तेरे नाम का गीत हमने आपके नाम किया क्योंकि आपकी पसंद थी वो। अर्जुन जी आपका भी, अरुणा जी थैंक यू, एंड सोनी रावल जी साइलेंटली लिसन करती हैं प्रोग्राम को और इन्जॉय करती हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे बहुत से साथियों ने कल एकता में मुझे मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई तो बहुत, सच मानिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। आप सबसे मिलकर, सबके नाम मैं याद नहीं रख सकती क्योंकि सरिता भुलक्कड़ है और हमेशा कहती हूँ कि मैं भुलक्कड़ हूँ, तो आप सभी मुस्कुरा दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपने भी मेरा काम पसंद किया कल भी और आज का रेडियो प्रोग्राम भी आप इंजॉय कर रहे हैं।
2: Like gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको मिल सकता है 128 रुपीज एंड 9 पैसेस, ये LemFi वालों का रेट है। एंड अफगानी 85.84, पाकिस्तानी रुपीज 366.37, बांग्लादेशी टका 162.75 एंड श्रीलंकन रुपी 430

0: 7.77, Kenyan shillings 171.67, and US dollars 1.32.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: Like a gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट गोल्ड का रेट इस वक्त है मार्केट में 101 pounds and 94 pence का एक ग्राम सोना.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: नीसा नासिर लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना
4: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM
0: और इस वक्त आप साथ दे रहे हैं अपनी प्रेजेंटर सरिता का. घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि सरिता जाने का वक्त है. और जाते जाते एक और बात बता दूं आपको कि अगला और लास्ट गाना आप सुन पाएंगे कमर्शियल ब्रेक के उस पार. लेकिन वो गीत इसलिए चुना है क्योंकि ये फिल्म भी आज ही के दिन इन 1963 में रिलीज हुई थी. फिल्म का नाम है दिल ही तो है. राज कपूर और नूतन ने इस फिल्म में काम किया था एंड रोशन जी का था संगीत. साहिर लुधियानवी साहब के लिखे हुए बोल आप ज़रूर इंजॉय करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है. और मुझे अब माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त दीजिए. मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह विद द विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर और फिर हमारी गोल्ड नाइट्स एंड देन फिर कल सिलसिला शुरू होगा ब्रेकफास्ट शो से. काजल आपका साथ देंगी. काजल के बाद रवि शर्मा. रवि शर्मा जी के बाद आएंगे बाली ब्रह्म भट्ट एंड देन बाली ब्रह्म भट्ट के बाद सैंडी शाह अगेन एंड देन अनीसा नासिर. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त. और मैनचेस्टर में अब आप सुनेंगे प्रोग्राम जैसी के साथ और दूसरी तरफ आ रहे हैं नीरज. उनका साथ दीजिए. बाय बाय. टेक केयर.
5: सनशाइन स्काईस्क्रेपर्स एंड सूक्स
6: फॉर लेस देन यू थिंक. दिस इज अफोर्डेबल दुबई फ्रॉम साउथ ओल्ड ट्रैवल. वी हैव सिक्योर्ड स्पेशल पैकेजेस विद आवर टॉप होटल पार्टनर्स.
5: फ्लाइंग डायरेक्ट विद एमिरेट्स सो यू कैन एंजॉय 3 नाइट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन. वेदर इट्स अ फैमिली हॉलिडे, अ रोमांटिक ब्रेक और अ शॉपिंग ट्रिप, दुबई हैज नेवर बीन बेटर वैल्यू.
6: हरी Availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा.
9: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम.
8: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
9: रात 8 बजे से देर रात तक. टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट. 5 साल से छोटे बच्चे फ्री.
8: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए. टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
9: 07956458872.
8: तो मिलते हैं गरबा में.
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
10: ये तो बताओ कोई पता चला?
11: गुरु गुरु
12: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
11: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
12: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
10: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
9: टू बुक कॉल 0208 514 5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica रेडियो नेटवर्क.
15: When you lose someone dear, a little support can mean so much. Om Funeral Care provides compassionate guidance, respecting your family's customs and traditions. On Kenton Road, West London, and in Ilford, East London, our priests conduct funeral rites in Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, English, and other languages. Call Kalpesh Patel on 0208-922-3344. Available 24 hours a day.
13: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
16: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
17: Dubai is the place. 11,
16: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
18: Danube 11, 11. Danube Properties.
19: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
20: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
19: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
20: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल today.
21: Escape to Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Japan, Korea and Philippines with TravelHubWorld.com.
22: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
21: TravelHub, best service with unbeatable price.
22: At all protected.
21: Visit TravelHubWorld.com.
23: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
24: Add crunch to your celebrations with Haldiram's.
25: Aloo Bhujia, Punjabi Tadka, Bombay Mix, Khatta Meetha, Nimbu Masala and more. Made for sharing.
24: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
25: Haldiram's.
9: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: L-Y-C-A. This is Leica.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: the fantastic soundtrack of Bersaat. So, got a few messages coming, then the next couple of songs are going to take us to the top of the hour. But join me again for a second hour filled with wonderful, wonderful memories. And of course, if you want to be part of those memories and have some sort of input with your favourite song or something that fits Vintage Gold, then you can always email me, sandy@likeagold.com, and in the forthcoming shows, I hope to add your choice in as well. This is Sandy Shaw on Vintage Gold. I'll talk to you in the next hour.
1: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shaw. Yeah, like a gold.
2: समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
3: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
2: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
3: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
2: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
3: 07956458872
2: तो मिलते हैं गरबा में
4: नवरात्रि का जोश गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद
5: बीकानेर वाला परंपरा भी
4: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ

0: साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड, बीकानेर वाला। इस नवरात्रि गरबा भी, स्वाद भी। बीकानेर
1: वाला। No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Sri Sattavis Gam Patidar Samaj on Wednesday, 14th October at 40 Avenue, Wembley, HA9 9PE. Come and share the joy of Navratri with us.
3: Sponsored by Star Tours. Switzerland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
7: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
8: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
10: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
1: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
0: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
2: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: करके अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
2: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
3: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 a.m. DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
4: This is Leica.

0: ताजा करें अपनी यादें नायका गोल्ड के साथ।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर,
2: फुर,
0: फुर, फुर, फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
0: कह दो कह दो
3: कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।